अपने जंगल के अंदर से एक नल बनाया है। अगर वो पानी का मुहान ही बंद कर देंगे तो ये लोग कितने दिन भूखे प्यासे लड़ेंगे।

0: मनसुन विशेष अफर सिप सिकौ आत्मनिर्भर बनौ आत्मनिर्भर बनौ।
1: भरपर्दो विश्वासिलो र व्यावसायिक ड्राइभिङ तालिमका लागि सुमन ड्राइभिङ सेन्टर चौतारा।

Elumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।